उनके पैसे दबा कर हज पे चला जाऊं, ज़ियारतों पे चला जाऊं और ये सोचूं कि मौलाना साहब ने फरमाया है जो बंदा हज करे वो ऐसे हो जाता है जैसे गुनाहों से पाक, जैसे आज शिकम में बादर से बाहर निकला है। ये बातिल है। जब तक के कुरान के बताए हुए मेयार को इसके साथ ना रखा जाए, मौलाना साहब ने बताया है, इमाम ने फरमाया है जो फलान इमाम की ज़ियारत करे उसके गुनाह माफ हो जाते, कब? जब कबूल हो। तवज्जो फरमा रहे। तो आमाल, नेक आमाल की कबूलियत की शर्त तकवा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह फकत सिर्फ तकवा वालों से कबूल करता है। और यहां पर यह भी बात जरूरी है कि वजाहत की जाए कि इस्लाम का निजाम निजाम तौहीद है, एक निजाम है, दो नहीं है। कि अगर एक जगह से रद्द कर दिया जाए अमल तो कोई दूसरी जगह है कबूलियत की। मसलन अल्लाह ने तकवा की शर्त रखी है, लेकिन कोई ये समझे कि इमाम हुसैन ने तो तकवा की शर्त नहीं रखी ज़ियारत की, अल्लाह ने कबूल ना किया, मौला हुसैन कबूल कर ले, ये शिर्क है। जो अल्लाह कबूल ना करे, अल्लाह के ये बंदे कबूल नहीं करते। ये उन्होंने ही सिखाया है, अल्लाह का ये दीन उन्होंने ही बताया है। कोई कहे अल्लाह कबूल ना करे मेरे फलान अमल को, जनाब जहरा सलामुल्ला अलैहा कबूल कर लेंगे। तो ऐसा बंदा एक निजाम तौहीद का कायल नहीं है, वो समझता है दो जगह तीन जगह, अगर एक जगह कबूल ना हुआ तो दूसरी जगह कबूल हो जाएगा। तो तकवा कबूलियत आमाल की शर्त है। इस पहले खुतबे में मैं चंद आयात कुरान करीम की आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये आयात सूरह आल इमरान की आयत नंबर 100 से लेकर 105 तक है। ये कब नाजिल हुई? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके थे, औस और खजरज तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मदीना में रहने वाले बनी इसराइल यहूदी, इनसे इस्लाम की ताकत नहीं देखी जाती, बर्दाश्त नहीं हो रही। औस और खजरज इस्लाम कबूल करने से पहले एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन थे, आपस में जंगें लड़ चुके थे, एक दूसरे के अफराद को कत्ल कर चुके थे, दुश्मनियां थी। इस्लाम की और ईमान की बरकत से ये एक दूसरे के भाई भाई बन गए, दुश्मनियां इन्होंने भुला दी। तो यहूदियों ने एक साजिश की, आज भी कर रहे हैं, दूसरे खुतबे में अर्ज करूंगा, पहले खुतबे में सिर्फ आयात। यहूदियों ने साजिश की कि पुरानी जंगों के अशआर पढ़ के औस और खजरज के अफराद को भड़का के दोबारा लड़ाया जाए, कबायली जज्बात भड़काए जाए। तो उन्होंने ये काम करना चाहा और करीब था कि जंग शुरू हो जाती, लेकिन अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और इनको रोका और फरमाया क्या ईमान के बाद दोबारा जाहिलियत की तरफ वापस जाना चाहते? तवज्जो फरमाए। औस और खजरज कलमा नहीं छोड़ रहे थे, इस्लाम नहीं छोड़ रहे।

रहे थे कि वो कह रहे हो हमने बस इस्लाम को छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जाहिलियत की तरफ वापस जाना चाहते हो, इस पर आपकी तवज्जो रहे। तो इस वाकये के बाद ये आयत नाजिल हुई जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 100 से 105 तक आपकी खिदमत में तिलावत करूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयत नंबर 100। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीकन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। कितना वाज़ेह है, ए ईमान वालों, अगर तुम जिन्हें किताब दी गई है यानी तुमसे पहले, उनके एक गिरोह की बात मान लोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद काफिर बना देंगे, कुफ्र की तरफ पलटा दे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नाम निहाद मुसलमान, उनके कान लगे होते हैं कि मसलन आलमी बड़ी ताकतें उनसे क्या तकाजा करती, आपस में लड़ने के लिए तैयार होते। तो अल्लाह का कुरान तो अबदी है। फिर फरमाया 101 में وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور کیوں کر تم کفر کر سکتے ہو ان کی باتیں مان کر جبکہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اور تمہارے سامنے آیات قرآن اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے۔ وہ کیا پالیسی دے رہی ہے وہ دیکھو، आयात कुरान की दी हुई पॉलिसी को छोड़कर, रसूलुल्लाह की रहनुमाइयों को छोड़कर कैसे मोमिन हो तुम, अहले किताब की बातों में आकर, यहूद की बातों में आकर उनका एजेंडा आगे बढ़ाओ। वमन यअतसिम बिल्लाह फकद हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, और जिसने भी अल्लाह से तमस्सुक कर लिया यानी अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लिया तो यकीनन उसकी हिदायत सिरात मुस्तकीम की तरफ कर दी गई। आयत नंबर 102 तवज्जो फरमाइए, ये मारूफ आयत है लेकिन किस सियाक व सबाक में नाजिल हुई है, किन हालात में, गौर फरमा लीजिए। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही। इतना हसास मामला है ये कि दुश्मन तुम्हें आपस में लड़वा दे। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का तकवा इस तरह इख्तियार करो जैसे उसके तकवा का हक बनता है। बहुत ही हसास हो जाओ इस मामले में, तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की नाफरमानी से उस तरह बचो जिस तरह उसकी नाफरमानी से बचने का हक है। और अब गौर कीजिएगा, वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज तुम्हें मौत न आए मगर इस हालत में कि तुम अल्लाह के फर्मा बरदार। मुस्लिमून यानी अल्लाह के फर्मा बरदार, जिसे कुरान मुस्लिम कहता है। मुस्लिम का माना होता है तस्लीम अल्लाह के हुक्म के आगे। वैसे तो कोई किसी स्याह रंग के आदमी का नाम भी प्यार से चांद रख दे, उसमें आपस में कोई शबात नहीं है। चांद तो चमक रहा होता है, सफेद होता है जबकि स्याह रंग, लेकिन रख लेते। अल्लाह के हाँ मुस्लिम कौन है, खबरदार किया अल्लाह ने, यानी अगर तुम आपस में लड़ पड़े तुम्हारी मौत फरमा बरदारी की हालत में नहीं आएगी। ऐसे बचो अल्लाह की नाफरमानी से जैसे नाफरमानी से बचने का हक है, खबरदार किया। और क्या करो फिर, कैसे बचना है, मशहूर तरीन आयत 103। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। बहुत वाज़ेह है,

लकीर खींच दी, यहां से आगे नहीं जाना। और वअतसिमु, और मजबूती से थाम लो, बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को, जमीअन, और कोई इस्तिस्ना नहीं है, सब के सब, सारे के सारे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और गुरु गुरु मत बन। तुम्हें ईमान ने जोड़ा है, अल्लाह की इस नेमत की नाशुक्री मत करना, फिरके मत बनना, गुरु मत बनना। वद्कुरु नेमत अल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो तुम पर उसने की। इद कुन तुम अदाअन, जब तुम दुश्मन थे, इस्लाम से पहले दुश्मन थे, फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, ईमान की तासीर। फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वानन, तो तुम अल्लाह की नेमत के सबब भाई भाई बन गए, इख्वान। तुम तो एक दूसरे को कत्ल करते थे, अल्लाह की नेमत के सबब तुम भाई भाई बन गए। और उस वक्त तुम्हारी हालत क्या थी, कहां गिरने वाले थे, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, और तुम तो आग के गड़े के किनारे पर पहुंचे खड़े थे, गिरने वाले थे, फअनकज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ने तुम्हें उसमें गिरने से बचा लिया। कذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون, इस तरह अल्लाह अपनी आयात वाज़े करके बयान करता है, لعلكم تهتدون, ताकि तुम हिदायत की तरफ आओ। ये सारी आयात किस लिए, आपस की लड़ाई को रोकने के लिए, जिन्होंने कलमा पढ़ा है अल्लाह और रसूल का, उनसे खिताब हो रहा है। 104, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैर, और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जरूर जो खैर की तरफ दावत दे। लफ्ज आम है, हर खैर, भलाई की तरफ दावत दे। एक ग्रोह तुम्हारे अंदर मौजूद हो, लेकिन आयात का जब अगर हम सियाक देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें, तो यहां खैर से पहली मुराद क्या है कि आपस में नहीं लड़ना, आपस में नहीं लड़ना, इकट्ठे रहना है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब अल्लाह की बारगाह में आपस में लड़ने वाले मुसलमानों के सामने ये आयात अल्लाह रखेगा कि तुम कौन से ईमान के कायल थे कि अल्लाह ने जो अपना आइन तुम्हें दिया था, तुम्हें परवाह ही कोई नहीं। आज सख्त जरूरत है उम्मत को तमाम मसालिक में से कि आग, इख्तलाफात की आग भड़काने की जगह इकट्ठे हो, खैर की दावत दे, आपस के मामलात मिल के तय करें, ना कि अमेरिका वगैरह से करवाए, उनके एजेंडे पे चलो। यहूद और नसारा के एजेंडे पर अमल करना ये है। तुम में एक जमात जरूर ऐसी बन जाए जो खैर की तरफ दावत दे। وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, और नेकी का हुक्म करे, अच्छाई का, और बुराई से रोके। यहां पे मुराद अच्छाई से पहली मुराद, वरना माना वसी है, सब अच्छाइयां शामिल हैं, लेकिन यहां पर आयात के सियाक को, आयात कब नाजिल हुई है उसको देखते हुए, अमर बिल मारूफ यानी मत लड़ो, आपस में इकट्ठे रहो, बुराई से रोकना यानी लड़ाई से रोकना, तफरकाबाजी से रोकना। और फिर गौर फरमाया अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और तुम जो मर्जी मेयार बना लो, याद रखना यही लोग, ये जिम्मेदारी अदा करने वाले, यही लोग फलाह पाने वाले, यही लोग कामयाबी तक पहुंचने वाले हैं।

जिनको ये दर्द महसूस हो कि मुसलमान आपस में क्यों लड़ रहे, ना कि एक दूसरे की लड़ाई पर खुश हो और मजे ले। और आखिरी आयत 105, बहुत गौर फरमाइएगा, ये वो आयत है जिनको उम्मत इस्लाम ने जी भर के पामाल किया है और इन्हें पामाल करने से मजा लेते हैं और ज्यादा भड़काने से खुश होते हैं एक दूसरे के खिलाफ। कुरान तो नहीं बदलेगा, अल्लाह को आइंदा के हालात का भी पता था जैसा कि माजी का भी सब कुछ जानता था। तो क्या फरमाया आले इमरान आयत नंबर 105 में, फरमाया वला तकूनू कल्लदीन तफर्रकू, ए मुसलमानों तुम उन लोगों की तरह मत बन जाना जिन्होंने फिरके बनाए। मुसलमानों ने फिरके बनाए या नहीं बनाए जी? बस वाजे है कि इस आयत को छोड़ दिया, इस आयत वला तकूनू तुम मत बन जाना कल्लदीन तफर्रकू, वो लोग जिन्होंने ग्रोह बनाए फिरके बनाए, तफरका तफर्रकू फर्क से जुदाई। एक दफा एक बंदा मसलन किसी एक खास फिक के मुताबिक जिसे वो ज्यादा बेहतर समझता है नमाज पढ़ रहा है, एक हाथ खोल रहा है दूसरा हाथ बांध रहा है, अपनी दलील अल्लाह के सामने रख देगा, और एक दफा इसकी बुनियाद पे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, नफरत कर रहे, इसकी इजाजत नहीं है। सब एक ही उम्मत समझे, अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे को एक ही उम्मत समझे, बेवकूफों और नफरत के पौधे लगाने वालों की बकवासात को ना सुने, अल्लाह की आयात को एजेंडा बनाए। अल्लाह की आयात हाकिम है तमाम चीजों पर, अहादीस भी आयात की तरफ पलटाई जाती है। मैं सवाल करता हूं, जब अल्लाह फरमा रहा है कि तुम उनकी तरह मत हो जाना जो फिरके बने, उसके बाद रसूलुल्लाह या आइम्मा अहले बैत कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिसका लाजमी नतीजा फिरका बनाना हो? कर सकते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुरान और मेरे अहले बैत कयामत तक जुदा नहीं हो। लिहाजा अगर ऐसी कोई बात है तो वो उनके नाम पर घड़ा गया झूठ है। अल्लाह की किताब को अगर कायम किया जाए तब पता चलेगा, लेकिन अगर अल्लाह की किताब सिर्फ इसाल सवाब के लिए और हुसूल सवाब के लिए रह जाए और हिदायत का ओदा उससे छीन लिया जाए तो फिर यही नतायज निकलते, जैसा कि अल्लाह ने पिछली कौमों की यही हरकत जो उन्होंने अपनी आसमानी किताबों के साथ की बताई हुई। तुम उन लोगों की तरह मत बन जाना जिन्होंने तफरका किया, वख्तलफू और इख्तलाफात का शिकार हुए, मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, इसके बाद के जब उनके पास बय्यिनात वाज़ह अल्लाह के हुक्म आ चुके थे, वउलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और यही लोग हैं जिनके लिए अजीम अजाब है। फला कौन पाएंगे? जो खैर की दावत दे, इकट्ठा रहने की दावत दे, और अजाब किन के लिए? जो तफरके की आग को और भड़काएं। अल्लाह की किताब के बताए हुए उसूलों को नजरअंदाज कर दे। और अगली में दो आयात भी पढ़ दूं, कब होगा ये अजाब? यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, जिस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे चमक रहे होंगे और कुछ चेहरे स्याह पड़े होंगे, फअम्मल्लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बादा ईमानिकुम फदूकुल अदाब बिमा कुंतुम तकफुरून, तो जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा कि तुमने ईमान के बाद दोबारा कुफर कर दिया। ये वही जो आयत नंबर 100 में कहा था, अगर इनकी बात मानोगे तो मैं ईमान के बाद दोबारा कुफर की तरफ पलटा दे। अब इनका अंजाम बताया जा रहा है जो उनके एजेंडे पर चले, तुम ईमान के बाद दोबारा तुमने कुफर कर दिया था तो चखो इस अजाब के मजे उस कुफर की वजह से जो तुमने किया। वो अम्मल्लज़ीन अबयद्दत वुजूहुहुम फफी रहमतिल्लाहिहुम फीहा खालिदून, और वो लोग के जिनके चेहरे सफेद होंगे तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक, ऐ हबीब ये अल्लाह की आयात है जिन्हें हम बरहक आपको पढ़कर सुना रहे हैं। वमल्लाहु युरीदु

खड़े हो गए सो कॉल्ड नाम निहाद तारीख इंसानियत की सबसे पावरफुल आर्मी के सामने, और आज तक खड़े। तफसीलात का वक्त नहीं है, लगता यूं है कि उन्होंने अब यह सोचा है के बजाय अपना असला जाया करने के, जिसके जखीरे बहुत ही निचली सतह पर आ गए थे, अब आपस में लड़ाई शुरू करवा दी जाए। लड़े मुसलमान, जो हमारे इत्तेहादी मुसलमान हैं, वो हमें अरबों डॉलर्स पे करके असला खरीदे और इस्तेमाल अपने ही जैसे मुसलमानों पे करें। काश के आज इस उम्मत में ये सोच रखने वाले, जो सोच अल्लाह ने इन आयात में, आले इमरान की आयत नंबर 100 से 105 में दी है, काश हर मुल्क में से ये सोच रखने वाले आगे आए। कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता, आखिर में फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी है हज की शक्ल में, अल्लाह करे इस साल भी ऐसा ही हो। गुज़श्ता साल अगरचे हालात बहुत खराब थे, लेकिन फिर भी ईरानी मुसलमान वो भी भरपूर तरीके से हज में शरीक थे। ये कितना बड़ा मैसेज है कि बिल आखिर तुम्हारा मरकज एक है। तो अगर अल्लाह ने यह सिखाया है कि एक मरकज के गिर तुमने चक्कर लगाने और सफा और मरवा की हुदूद के अंदर रहकर सही करनी है, हुदूद क्रॉस नहीं करनी वरना बातिल है, लिमिट्स में रहना है जो लिमिट्स अल्लाह ने बता दिए, तो इस हज से क्या सीखना चाहिए मुसलमानों को? खुद मिलके बैठ जाए, खुद मिलकर बैठे। अमेरिका के लिए दलाली ना करें, इसराइल के लिए, उनके ग्रेटर इसराइल के लिए दानिस्ता या ना दानिस्ता दलाली ना करें। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। बड़े बड़ों के इक्तदार जब खत्म हुए, नामो निशान मिट गया और हर कोई अपने अमल लेके अल्लाह की बारगाह में हाजिर, मिल के बैठे। जो मुश्तरकात हैं, एक उम्मत होने का एहसास पैदा करें, जहरीला मवाद बकने वालों को लगामे डाले हर फिरका, और उम्मत के तसव्वुर को जिंदा करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन आयात का एजेंडा है। वलन तजिदा सुन्नतिल्लाह तब्दीला, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं। ला मुबद्दिल लिकलिमाते, अल्लाह की बातों को तब्दील करने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला इस्लाम की तकवियत और इस्लाम की सरबलंदी के लिए इस उम्मत को काम करने की और उसी के मुताबिक फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.